खरीदार 190 रुपैयाँ 78 पैसा, बिक्री दर 191 रुपैयाँ 53 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदार 106 रुपैयाँ 92 पैसा, बिक्री दर 107 रुपैयाँ 35 पैसा। कनेडियन डलर एकको खरिदार 108 रुपैयाँ 58 पैसा, बिक्री दर 109 रुपैयाँ 1 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदार 118 रुपैयाँ 30 पैसा, बिक्री दर 118 रुपैयाँ 77 पैसा। जापानिज येन 10 को खरिदार 9 रुपैयाँ 48 पैसा, बिक्री दर 9 रुपैयाँ 52 पैसा। चाइनिज येन 1 को खरिदार 22 रुपैयाँ 46 पैसा, बिक्री दर 22 रुपैयाँ 55 पैसा। सऊदी अरेबियन रियल 1 को खरिदार 40 रुपैयाँ 47 पैसा, बिक्री दर 40 रुपैयाँ 63 पैसा। कतारी रियल 1 को खरिदार 41 रुपैयाँ 66 पैसा, बिक्री दर 41 रुपैयाँ 82 पैसा। थाई भाट 1 को खरिदार 4 रुपैयाँ 64 पैसा, बिक्री दर 4 रुपैयाँ 66 पैसा। युएई दिराम 1 को खरिदार 41 रुपैयाँ 35 पैसा, बिक्री दर 41 रुपैयाँ 52 पैसा। मलेसियन रिंगिट 1 को खरिदार 37 रुपैयाँ 43 पैसा, बिक्री दर 37 रुपैयाँ 58 पैसा। साउथ कोरियन वन 100 को खरिदार 10 रुपैयाँ, बिक्री दर 10 रुपैयाँ 4 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिदार 16 रुपैयाँ 10 पैसा, बिक्री दर 16 रुपैयाँ 16 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिदार 16 रुपैयाँ 10 पैसा, बिक्री दर 16 रुपैयाँ 16 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिदार 19 रुपैयाँ 38 पैसा, बिक्री दर 19 रुपैयाँ 46 पैसा। कुवेती दिनार 1 को खरिदार 494 रुपैयाँ 32 पैसा, बिक्री दर 496 रुपैयाँ 27 पैसा। बराइन दिनार 1 को खरिदार 402 रुपैयाँ 78 पैसा, बिक्री दर 404 रुपैयाँ 38 पैसा। र अन्त्यमा ओमानी रियल 1 को खरिदार 394 रुपैयाँ 47 पैसा, बिक्री दर 396 रुपैयाँ 3 पैसा। श्रोताहरू भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ आज यानि कि शनिबारको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको खुल्ला बजार बिक्री विनिमय दरहरू। अब भने लागिहाल फेरि पनि अर्को गीत सङ्गीततर्फ नै। अर्को गीत रहेको छ आजको बिहानीमा स्वप्न सुमनले गाउनु भएको साथी।